0: प्यार की सूरत से अगर प्यार है तुमको, रुखसार पे सुन्नत को सजा क्यों नहीं लेते, रुखसार पे सुन्नत को सजा क्यों नहीं लेते।
1: इफ यू रियली लव द सूरत ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ माय डियर ब्रदर्स, इफ ओनली नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वाज सिटिंग हियर अमंगस्ट अस, just picture ourselves sitting in a majlis in which Nabi alayhi salatu wasalam is sitting. Will any Muslim with the least bit of iman have the himmat and courage to sit in front of him with a shaven beard? So if you love the face of Rasulullah sallallahu alayhi wasalam, then why don't you decorate your face, adorn yourself with the sunnat of Nabi alayhi salatu wasalam on your face? So that on Qiyamah Day at least you can say there.

तुझ पे हो स्वदवतन। ऑल्दो वी आर इन अवर होम टाउन्स पर दिल मदीने में है। वी प्रिपेयर टू सेक्रीफाइस हंड्रेड्स ऑफ सच काइंड ऑफ सिटीज एंड टाउन्स एंड प्लेसेस फॉर द सेक ऑफ मदीना शरीफ। The fitnas of Dajjal are soon going to come. In fact, early fitnas have all started. The real Dajjal will come when the time Allah Ta'ala knows. But the fitnas we can see have started. All those Dajjali fitnas. Father Shah Badr Alam Rahmatullah Ali, in his Nasihats, I discussed it in detail yet two or three occasions. But just the beginning couplet of that nasihat, Azizo ko mujhe ek raah

मुझसा कोई बदकार न होगा, कौन सी मैंने की न बुराई। मुझसा कोई बदकार न होगा, कौन सी मैंने की न बुराई।

एक एक घंटे का प्रोग्राम होता है, किसी को एक दम तीन घंटा पाँच घंटा बैठना मुश्किल होता, देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी तो ज़रा मुश्किल, शुरू कर दे, इसको ऑफ कर दीजिए, अब गर्म हो गया।

है बस एक, अगर हूं तो खार में हूं। ओ माय बिलव्ड अल्लाह, इन योर गार्डन एवरी वन इज अ ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंट रोज, द ओनली वन दैट इज अ थॉर्न इन द गार्डन इज माई सेल्फ।

तेरे गुलिस्तान में सब गुल है, बस एक अगर हूं तो खार में हूं। मुझे भी कुछ फिक्र आखिरत हो, बहुत ही गफलत शियार में हूं। रहा मैं बेकार जिंदगी भर, बस अब तो मशगूल कार में हूं।

गुना में आलूदा हो रहा है। Every hair of mine, O my Allah, is immersed in the ocean of sins.